0: You are listening to Friday with Richa only at 5EBI 103.1 FM.
1: For live streaming at www.5ebi.com.au. Also on demand at
0: www.5ebi.com.au under Indian Hindi.
2: Join us on Friday with Richa.
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 5VBI 103.1 FM फ्राइडे विद रिचा। आज का शो मैं थोड़ा सा अलग लेकर आई हूँ, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसने हमें फिर से याद दिलाया है कि नेशनैलिटी हमारी पहचान हो सकती है, रिलीजन हमारी आस्था हो सकती है, कास्ट, लैंग्वेज, कल्चर हमारी पहचान का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों सबसे ऊपर है हमारा इंसान होना। और इसी के साथ आज बात होगी हमारे रूट्स की, हमारे माता पिता और एंसेस्टर्स की, क्योंकि इस समय भारत में चल रहा है पितृपक्ष, श्राद्ध या फिर पिंडदान का समय, और फिर कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगा वो फेस्टिवल जिसमें पूरा रंगीन हो जाता है इंडिया, म्यूजिक और डांस से भर जाता है। जी हाँ, नवरात्रि की बात कर रही हूँ मैं। तो आज का शो है थोड़ा इमोशनल, थोड़ा स्पिरिचुअल और बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल। तो सुनते रहिए 5EBI 103.1 FM। मैं हूँ आपकी दोस्त रिचा।

IVBI 103.1 FM ट्यून किया है आपने दोस्तों, और आज हम बात कर रहे हैं कैप्टन स्मिथ मच्छार की। जी हाँ, जिनकी एक्चुअली में आजकल पूरे वर्ल्ड में चर्चा हो रही है। हुआ ये था दोस्तों, 30 सितंबर को फ्लाई दुबई की फ्लाइट उड़ी थी दुबई से, और फ्लाइट के कॉकपिट में एक बेहद गंभीर घटना हुई। इंडियन कैप्टन स्मिथ मच्छार पर उनके को पायलट ने हमला किया और जो प्लेन था वो अचानक से नीचे गिरने लगा। और सोचिए, एक पायलट खुद घायल है, एयरक्राफ्ट कंट्रोल में नहीं है, सैकड़ों लोगों की जान खतरे में है। लेकिन उस मोमेंट में कैप्टन स्मिथ मच्छार ने कॉकपिट डोर खोलने में सफलता हासिल की, यानी उन्होंने बाकी लोगों को अंदर आने और सिचुएशन संभालने का मौका दिया। पैसेंजर्स और ट्रैवलिंग क्रू ने अटैकर को ओवर पावर करने में मदद की और एयरक्राफ्ट को सऊदी अरेबिया में लैंड कराया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक एयरक्राफ्ट में मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं और कैप्टन मच्छार को हॉस्पिटल में ले जाया गया और उनकी कंडीशन अब स्टेबल बताई जा रही है। इंडिया में ही नहीं दोस्तों, दुनिया भर में उनके करेज की चर्चा हो रही है। लेकिन मुझे इस कहानी में सिर्फ एक इंडियन पायलट की ब्रेवरी नहीं दिखाई देती, मुझे दिखाई देती है ह्यूमैनिटी। क्योंकि उस कॉकपिट में उस मूवमेंट पर कोई और नहीं सोच रहा था, तुम किस धर्म के हो, किस कंट्री के हो, तुम्हारी कास्ट क्या है। उस समय सिर्फ एक सवाल था, लोगों की जान कैसे बचाई जाए। और शायद यही हमारी सबसे बड़ी पहचान होनी चाहिए। हम इंडियन हैं, इस पर हमें गर्व है, लेकिन उससे पहले हम इंसान हैं, और एक इंडियन ने दुनिया को ये बात अपने एक्शन से दिखाई और बताई। कभी कभी कोई स्पीच नहीं देता, कोई बड़ी फिलॉसफी नहीं बताता, बस एक सही काम करता है और वही काम उसकी पूरी कहानी कहता है।

0: tune in to Friday with Richa, only at 5EBI 103.1 FM. Relax with Bollywood hits and immerse yourself in the vibrant sounds of Bollywood. Join Richa for a musical journey at 5 PM every Friday. Don't miss out.
1: आप सुन रहे हैं 5VBI 103.1 FM दोस्तों। तो आज की ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई, सच्ची कहानी, जी हाँ, स्पित मच्छर की, तो ये स्टोरीज हमें ये याद दिलाती है कि लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। इसलिए जो कहना है आज कहिए, जिससे प्यार है उसे आज बताइए, मम्मी पापा को फोन करके जो कहना है मन की बात कहिए, और प्लीज आज ही कीजिए।

बिल्कुल सही बात है, जग में सिर्फ हमारे वो प्यार के दो मीठे बोल रह जाएंगे दोस्तों, और कुछ नहीं रह जाता, ये सब हम जानते हैं। खैर चलिए प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं। आज 2 अक्टूबर है, आज गांधी जयंती है, और साथ में आज लाल बहादुर शास्त्री की भी जन्मतिथि है। और भारत में इस समय पितृपक्ष चल रहा है। 2026 में पितृपक्ष 26 सितंबर से शुरू होकर 10 अक्टूबर यानी कि सर्व पितृ अमावस्या तक रहेगा। इस दौरान कई परिवार अपने दिवंगत माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स और एंसेस्टर्स को याद करते हैं और श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे संस्कार करते हैं। अब यंग जनरेशन में शायद एक सवाल आता होगा, लेकिन एंसेस्टर्स को याद करने के लिए इतने रिचुअल्स क्यों? तो इसे सिर्फ रिचुअल्स की तरह मत देखिए दोस्तों, इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमोशनल मीनिंग भी है। हम अकेले नहीं बने हैं, हमसे पहले जनरेशन्स थी, उनकी मेहनत, उनके संस्कार, उनके सैक्रिफाइसेस किसी ना किसी रूप में हमारे आज का वो हिस्सा है। इसलिए श्राद्ध का बेसिक भाव है कृतज्ञता, यानी आज मैं जो भी हूँ उसके पीछे जिन लोगों का योगदान है मैं उन्हें याद करता हूँ। पिंडदान कहाँ कहाँ होता है? जी हाँ, जब पिंडदान की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है गया यानी कि बिहार का। गया का रामशिला हिल और विष्णुपाद क्षेत्र पिंडदान की परंपरा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान राम ने भी यहाँ अपने एंसेस्टर्स के लिए पिंडदान किया था। इसके अलावा उत्तर भारत में यानी कि नॉर्थ इंडिया में लोग अपनी फैमिली ट्रेडिशंस के अनुसार हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी जैसे तीर्थ स्थलों पर भी एंसेस्टर्स के जो रिचुअल्स हैं वो करते हैं। और बात सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित नहीं है दोस्तों, भारत के अलग अलग हिस्सों में एंसेस्टर्स को याद करने की अपनी अलग अलग ट्रेडिशन है। कहीं तर्पण होता है, कहीं श्राद्ध, कहीं पिंडदान और कहीं फूड ऑफरिंग्स। फॉर्म अलग हो सकता है, फीलिंग्स तो दोस्तों एक ही है, रिमेम्बरेंस एंड ग्रेटिट्यूड। और ये कौवे को खाना क्यों खिलाया जाता है, ये भी बात बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कई हिंदू ट्रेडिशंस में श्रद्धा के एक भोजन का हिस्सा जो है वो कौवे को दिया जाता है। जी हाँ, श्राद्ध का एक हिस्सा। धार्मिक मान्यता में क्रो को यानी कि कौवे को एंसेस्टर्स का सिंबॉलिक मैसेंजर माना गया है। इसलिए अगर कौवा भोजन ग्रहण करता है तो इसे कई परिवार शुभ और पितरों की संतुष्टि का संकेत मानते हैं। अब साइंस इस बिलीफ को रिलीजियस सिंबॉलिक की तरह देखेगा या नहीं, जबकि फेथ इसे स्पिरिचुअल कनेक्शन मानता है। और मैं रेडियो में आज यही कहूंगी कि फेथ को समझने के लिए हर चीज को प्रूफ करना जरूरी नहीं है, कभी कभी उसके पीछे छिपी भावना को भी समझना जरूरी है। क्यों, आप क्या मानते हैं इस बारे में मुझे जरूर बताएं। हमारा ईमेल आईडी है radiowithrucha@gmail.com। आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। चलिए सुनते हैं ये एक और खूबसूरत सा गाना।

माँ को तो सब पता होता है। सच में कभी कभी कितना मैजिकल लगता है ना, जो बात हम किसी से नहीं कहते ना करते हैं, माँ महसूस कर लेती हैं। दुनिया हमारे ऑपोजिट हो जाए, लेकिन सिर्फ माँ या पिता में से वही एक ऐसे होते हैं जो सदा ताउम्र हमारे साथ खड़े होते हैं। हमारे शास्त्रों में भी इसीलिए कहा गया है ना दोस्तों, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, अर्थात माँ को देवतुल्य मानो और पिता को भी देवतुल्य मानो। ये टीचिंग में आता है, साथ ही गुरु और अतिथि के प्रति सम्मान की भी बात कही जाती है हमारे सनातन धर्म में। लेकिन आज के यंग जनरेशन के लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ उनके पैर छू लें और पूरा दिन व्हाट्सएप पर बिजी रहें। सर्विस इज नॉट ओनली फिजिकल सर्विस। कभी उनका फोन उठा लेना, कभी पूछ लेना माँ आज आप कैसे हो, पापा आप कैसे हैं, चलिए साथ में चाय पीते हैं, कभी उनके पुराने किस्से सुन लेना, चाहे अपने हो या स्टोरी पुरानी हो। बिकॉज पेरेंट्स डोंट ऑलवेज नीड अवर मनी, बहुत बार उन्हें हमारा सिर्फ टाइम चाहिए होता है। और एक बात हम आपको याद दिलाना चाहते हैं दोस्तों, जब हम छोटे थे उन्होंने हमारे छोटे छोटे माइलस्टोन सेलिब्रेट किए, अब उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को नोटिस करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों, मानते हैं ना?

0: Tune in to Friday with Richa only at 5EBI 103.1 FM. Relax with Bollywood hits and immerse yourself in the vibrant sounds of Bollywood. Join Richa for a musical journey at 5 p.m. every Friday. Don't miss out.
1: ये भी किसी ने क्या खूब कहा है कि माता पिता का ऋण हम कभी चुका नहीं सकते, यानी कि इस जन्म में माता पिता ने जो हमारे लिए किया है हम चाह कर भी वो पूरा नहीं कर सकते हैं, और ये मैं बिल्कुल अच्छी तरह से मानती हूँ। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। 11 अक्टूबर 2026 से शरद नवरात्रि शुरू हो रही है जो कि 19 अक्टूबर तक चलेगी। 9 nights 9 forms ऑफ गॉडेस दुर्गा। और इंडिया में सेलिब्रेशन के कितने अलग अलग कलर्स, कैसे आइए बताती हूँ। गुजरात गरबा और डांडिया, वेस्ट बंगाल दुर्गा पूजा, दिल्ली उत्तर प्रदेश बिहार माता की चौकी जागरण और रामलीला की ट्रेडिशंस, हिमाचल प्रदेश देवी टेंपल्स और लोकल सेलिब्रेशंस, महाराष्ट्र जी हाँ वहाँ पर ट्रेडिशनल नवरात्रि सेलिब्रेशन होता है, साउथ इंडिया गोलू बॉम्बी गोलू विद जैसी ट्रेडिशंस होती हैं, यानी कि देवी एक लेकिन सेलिब्रेशंस के रंग अनगिनत, और यही तो इंडिया की खूबसूरती है ना। अब चलिए एक ऐसा गाना सुनते हैं जिसे सुनते ही ऐसा लगता है कि बस गरबा शुरू हो जाए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं और आप सामने नवरात्रि का कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या फिर उसमें आप भाग लेने वाले हैं, तो चलिए रिहर्सल शुरू कर देते हैं। मैं ये सॉन्ग बजाने वाली हूँ, मिलके डांस करते हैं क्योंकि 11 अक्टूबर दूर नहीं है।

तो दोस्तों इस गाने के साथ हमारा आज का फ्राइडे विद रिचा बस खत्म होने को है। तो आज के इस प्रोग्राम को खत्म करने से पहले एक बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट आपसे शेयर करूंगी। लोग हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना हम उनकी कही हुई बातों को बार बार अपने मन में दोहरा कर करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना कि अच्छी बातों को याद रखिए और बुरी बातों को भूल जाइए। इंजॉय योर वीकेंड, टेक केयर।